0: स्वामी स्वामी योर सर्वेंट सरेंडर्स एट योर फीट सीकिंग रिफ्यूज आई हैव कम टू यू लीविंग बिहाइंड माय वाइफ चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग इन लंका आई हैव नन एल्स बट यू यू आर एवरीथिंग टू मी ओ रामा I surrender my joys, my sorrows, and my very life at your divine lotus feet.
1: None seeks my refuge in vain. Ravana's days are numbered. You are the king of Lanka. That is my Sankalpa. I swear in the name of my three brothers that I will not return to Ayodhya unless I achieve this objective. I shall crown you right now as the king of Lanka.
2: Lord, what if Ravana seeks your refuge now?
1: If that be so, then I shall request brother Bharata to crown him as the king of Ayodhya.

बेसुमार बेअंत बढ़ दाता मने ही रहो पेख प्रभु कहो। जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु कहो। गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कभू चूरो बुझ प्रभु कहो। जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके। कट कट तिसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा। नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम अंधेरा। थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा। संत संग पावै जो नानक तिस बहुर ना हुई है फेरा। जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहंग छोड़ियो है त्याग रहाओ। जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग। कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग। तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड़ भाग। जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग। जैत सरी महला पंजवा मन मैं सतगुर ध्यान तरा। दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ। काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमै डरा। आयो दुख हरण सरण करना पत गहयो चरण आसरा। नाव रूप पयो साध संग पवनित पार परा। अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा जा कहो पय गोविंद सहाई। सुख सहज आनंद सकल स्यों वा कहो ब्याध ना काई रहाओ। दिसै

कृपा ठाकुर, दया मया कृपा ठाकुर की, सही संत सुभाई तिनके संग नानक निस्तरी है, जिन रस रस हर गुण गाई, जैत सरी महला पंजवां। गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी, अंधियारे मैं दीप रहाओ, सफल दर्शन तुमरा प्रभु प्रीतम, चरण कमलिया नूप, अनक बार करो तह बंधन, मने चिरावो धूप, हार पर्यो तुमरे प्रभु द्वारे, दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक, काढ़ लिहो नानके अपने को, संसार पाव के कूप, जैत सरी महला पंजवां। कोई जान

0: कहया ना माने सिर खाक शाने जिन संग मंतन जालिया। श्री राम रंगिया पार पूर्ण नै निमख मन मैं उठिया। बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना झूठिया। चरण कमल सरण आए नानक आया। दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया। मेर साध संगे भजे श्री तार कर अंग प्रभ जी तारिया। हर मान लिए नाम दिए अवर कश ना बिचारिया। गुण निधान अपार ठाकर मन लोड़ींदा पाया। बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया।
1: You have just heard a recital from the Guru Granth Sahib, the holy book of the Sikhs. We now offer you two Islamic devotional songs, the first of which sings of the last day. Belief in the last day, when all souls will be judged by God, is common to the Jewish faith, Christianity, and Islam.